खुशी और एंजॉयमेंट के लिए इंसान हराम का इर्तिकाब करके बसा होकर सारी जिंदगी के लिए नफसियाती मरीज बन जाता है। जो लोग हिजाब पे तनकीद करते हैं उनका कहना है कि कुरान की मुतल्लका आयात की तफसीर कल्चर के हिसाब से की गई है। हर एक को यह देखना है कि उसके कल्चर के लिहाज से क्या चीज मारूफ है। इससे पता चलता है कि सर ढकना कल्चर है, खासतौर पर एशिया में। इस बुनियाद पर तो बहुत सी मुस्लिम खवातीन हिजाब को तर्क कर रही हैं। अब आप देखिए कि मैंने किस कल्चर के एतबार से तफसीर की है। किसी कल्चर का मैंने जिक्र नहीं किया, मैंने तो जो लफ्ज कुरान में इस्तेमाल हुआ है उसका जिक्र किया है। और वो लफ्ज क्या है, आयत निकाल लीजिए ताकि आप दोबारा देख लीजिए, इसमें अगर क्वेश्चन आए तो आप जवाब दे सकिए। अब देखिए कि वकुल लिल मुमिनात यगदुदन मिन अबसारिहिन्न वयहफजन फुरूजहुन्न वला युबदीन ज़ीनतहुन्न इल्ला मा ज़हर मिन्हा वलियद्रिबन बिखुमरिहिन्न अला जुयूबिहिन्न। खुमर किसकी जमा है, खिमार की। खिमार किसको कहते हैं, सर के कपड़े को, दुपट्टे को, चाहे आप उसको दुपट्टा बोलें, स्कार्फ बोलें, कुछ बोलें, कोई भी चीज, लेकिन खिमार। अच्छा, एक और बात यह है कि कल्चर वल्चर कोई चीज नहीं है। किसी भी आयत का जब आप तशरी करते हैं तो सबसे पहले उसको अरबी कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि वहां ये लफ्ज किस माने में इस्तेमाल होता है। हजरत उमर का एक कॉल है, इज़ा उल्बिसा अलैकुम शैउम मिनल कुरआन फल्तमिसूहु फिश्शर। जब कुरान की कोई बात समझने में तुमको इल्तिबास यानी शुबा पड़ जाए, मिक्सअप हो जाए चीज, तो उसकी वजाहत कहाँ से देखो, शेर अरब में।

0: Du lytter til Radio Abkirvas på 92,9 MHz og kabelnet 88,9. I det tidsrum træffes vi på telefon 39 29 71 04. Den øvrige tid træffes vi på telefon 22 47 59 41.
1: Avaz, Delgi, Music Ki, Soch Ki, aur Aapki, Aapki Avaz.
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है। हमारे स्टूडियो का डायरेक्ट फ़ोन नंबर है 39 29 71 04। एक दफ़ा से फिर सुन लें 39 29 71 04। नियत खाव नियत चू इन हल्फियास नल्फिया।
3: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।
2: हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज अल्लाह ताला के पाक कलाम से करते हैं।
4: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
5: शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।
4: अलिफ

0: खुद ने सब कलमा पढ़ा,
1: काफिर मुसलमान हो गए।
0: जग में जब आए मोहम्मद, इस्लाम जिंदा हो गए। जग में जब आए मोहम्मद, इस्लाम

0: खुद सैदा हो गए
1: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए
0: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा
1: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा
0: काफिर मुसलमान हो गए
1: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम

0: मुहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए।
1: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा,
0: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा, बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा,
1: कहा फिर मुसलमान हो गए।
0: जग में जब आए मुहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए। जग में जब आए मुहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए। जग में जब आए
1: इस्लाम
0: जिंदा,
1: इस्लाम जिंदा हो गए।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।

0: की आवाज है,
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
2: सामेन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।

0: एफ एम 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: एफ एम 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: अऊज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सामाईन नाज़रीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर हाजिर है। सामाईन, आज इन्फॉर्मेशन के हवाले से हम बात करेंगे। आपको पता है कि नई हुकूमत बन गई है, मिनिस्ट्रियाँ भी आ गई हैं, बहुत सारी बातें चल रही हैं। तो मैं जो है वो माइक जो है इस वक्त शाह साहब के हवाले करता हूँ। सैयद तकीर हुसैन बुखारी शाह साहब और अदनान अली अमीन हमारे साथ हैं। माइक में शाह साहब के हवाले करता हूँ। जी शाह साहब,
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा गफूर साहब, आपको, अदनान को और आपकी टीम को, आपके जितने लिसनर और नाजरीन है सबको सलाम अलैकुम। आज खुशी का दिन है, आज गदीर कौम का दिन है, जहां रसूल पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया था 18 ज़िलहज को कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला, और ये इस्लाम के लिए बहुत बड़ी ईद का दिन है, खुशी का दिन है। और अख्तलाफात है राय अपनी जगह, लेकिन जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है या उनके जो अकवाल हैं उनको मानना हर मुसलमान का फर्ज है। आज हम बात करने जा रहे हैं यहाँ के लोकल जो नेशनल लेवल पे जो इलेक्शन हुए हैं, जिनको इतनी देर लगी है हुकूमत बनाने में, क्योंकि सबको याद होगा कि हम ये कहते रहे हैं इसी रेडियो पे, इसी प्लेटफॉर्म पे कि पीडीएम की गवर्नमेंट बनेगी। पीडीएम का मतलब है कि मिक्स गवर्नमेंट बनेगी और इनके सपोर्टर वही होंगे या एक आधा सपोर्टर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इस दफा भी मैं अदनान से, जो कि सोशल डेमोक्रेट के बहुत ही अच्छे वर्कर हैं और सियासी वर्कर भी हैं और सोशल वर्कर भी हैं, इनका एल्बर्सोन और वेस्टाइन और कोपेनहेगन में काफी मकाम है, ये यंग आदमी है और ये सियासत को समझते हैं। हम जानना चाहते हैं कि इनसे कि पहले तो ये बताएं कि ये जो इस वक्त गवर्नमेंट बनी है इसमें कितने डेनिश फॉरनर्स को सीट मिली है और कौन कौन से महकमे मिले हैं। जी अदनान साहब।
3: वालेकुम अस्सलाम शाह साहब और आदर साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं व्यूअर्स से कहूंगा कि ये जो गवर्नमेंट बनी है ये सेकंड टाइम है, कितने दिन लगे हैं। लास्ट टाइम जब मेरे फर्स्ट ने बनाई थी तो उसकी उम्र का रिकॉर्ड था, मगर ये रिकॉर्ड तो कह रहे काफी बड़ा बन गया। और इसलिए इसमें ये भी है कि ये तीन खोंग होता के बाद गवर्नमेंट बनी, तो बंदा कह रहे कि ये क्या कहते हैं लंबा टाइम लगा। और इसमें बंदा कह सकते कि ये बड़ा मुश्किल भी था, क्योंकि लास्ट वीकेंड किसी को नहीं थी समझ आ रही कि वो कर क्या रहा है और उसकी वजह से है। दूसरी बात, ये हुकूमत जो बनी है इसके अंदर टेक्निकली देखा जाए तो दो फीमेल्स हैं जिनके फॉरेन बैकग्राउंड हैं, उसमें से एक है मुसलमान और एक है जिसका क्या कहते हैं मिक्स बैकग्राउंड है, क्योंकि उसका क्रिश्चियन से भी तलक है और उसका क्रिश्चियन से तलक है, जहां तक मुझे पता है वो है मोनिका रूबिन जो लास्ट वीक की पार्टी की है, मुड़गाना की है, सेकंड टाइम वो इलेक्ट हुई है। पहली दफा वो इलेक्ट हुई थी 2022 में, क्योंकि पहली दफा जब मुड़गाना खड़े हुए थे। और दूसरा ये समिया जो है गडीखेल विंस्टर की मुसलमान है और गडीखेल विंस्टर की क्या कहते हैं इकोनॉमी फ्रेंस वॉरफेयर थी, इकोनॉमी वॉरफेयर थी और पता नहीं क्या क्या थी, सारी फ्रेंस का हैंडल वही करती थी। और टेक्निकली उसने एक और चीज की है लोगों को व्यूअर्स कर दें कि वो खाली मिस्त्री की तरह बैठेगी, उसने अपना जो फर्कसिंग स्केप है वो ऑल आउट दे लिया, मतलब कि वो वोट नहीं कर सकेगी, वो खाली मिस्त्री की तरह बैठेगी। मोनिका रूबिन दोनों सीटों पर बैठी हुई है, उसने नहीं दिया ऑल आउट, उसने भी लिया। और जहां तक मुझे पता है सीनियर स्टंप जो उसकी कोलीग है समीर की, उसने भी लिया ऑल आउट। तो ये दोनों जो है ये खाली मिस्त्री की तरह बैठेंगे पहला साल और उसके बाद देखते हैं कि क्या है। इसमें एक और चीज ये है कि ये पहली हुकूमत है डेनमार्क की हिस्ट्री की जिसमें फीमेल्स ज्यादा हैं। इसमें फीमेल्स क्या कह लें 11 हैं और 10 मर्द हैं, जिसमें से हुकूमत का फतेलिंग ऐसे हुई है कि 9 मिली हुकूमत जो बनी है उसका भी बता देते हैं, वो है सुशील कुमार, वो है एसएफ, वो है मुड़गाना और वो है गडीखेल एवेंस्टर। उसमें से ये हुआ है कि 9 जो है وہ مستر ہیں سوشل ڈیموکریٹس کے، پانچ ہیں ایس ایف کے، چار ہیں مڈوانا کے اور تین ہیں ریڈیکل وینچر کے. پچھلی بار 25 مسٹریاں بنی تھی، اس بار 21 مسٹریاں بنی ہیں. اس بار ان نے کچھ مسٹریاں کام کر دی ہیں. اس میں سے بگیسٹ چینج جو آیا ہے اور جو کیا کہتے ہیں جیسے آپ نے بتایا ہے، میرا سوشل ڈیموکریٹ ساتھ تعلق ہے مگر اس کو میں مکس اپ نہیں کرتا، مگر بگیسٹ شاک ہمارے لیے یہ آیا ہے کہ جو فینس منسٹر ہے اس کی پوسٹ چینج کی گئی ہے اور جسٹس منسٹر کی، ان لوگ ان دونوں نے بوٹا سوٹا کر لیا. اس سے این ایل آئی ایسوں کا اور کیا کہتے ہیں کہ یہ ہے ان کا آئیڈیا کہ میڈیفلس نے اپنا کیا کہتے ہیں اپنا افتر فیلئر پک کر لیا اور اب اس پہ بھی کافی ڈبیٹ چل رہا ہے پارٹی کے اندر.
4: عدنان آپ ویسٹ لائن میں رہتے ہیں اور جو ہمارے انٹرگیشن کے منسٹر بنے ہیں بدھ کو وہ یہیں سے تعلق رکھتے ہیں ویسٹ لائن سے اور وہ سوشل ڈیموکریٹ کے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ آئے تو یولینڈ سے ہیں لیکن یہاں ویسٹ لائن میں رہتے ہوئے وہ فارنرز کے ساتھ ان کے کافی رابطے ہیں، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ انٹرگریشن کی منسٹری جو ہے یہ یولینڈنگ اور انٹرگریشن اس کو وہ سنبھال پائیں گے اور ٹھیک طریقے سے وہ اس کو چلا سکیں گے؟
3: شاہ صاحب جو بہت مدرس کا ہوا ہے نا اس کو میں خود جانتا ہوں پرسنلی، کیونکہ وہ میرے ساتھ ہی ہوتا تھا 2000 میں جب ہم نے جوائن کی تھی پارٹی. اس کے بیک گراؤنڈ کو میں جانتا ہوں اور اس کے نالج کو میں جانتا ہوں. میرے خیال سے ایکسپیرینس کے ساتھ سے وہ اپنے دماغ سے چلا نا تو وہ کیا کہتے ہیں اس مسٹیریم کو ہینڈل کر جائے گا. کہ اس کے اندر دو وجہ ہیں، اس کے اندر دو وجہ یہ ہیں کہ جو بیک اپ ہے نا اس کے لیے جس طرح پارٹی ہوتی ہے اس کے اندر اس کے پیچھے میچیور سیٹسفائی ہوگا، وہ پرفارمنس وہ ہے پارٹی کا اور اس کا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے لرننگ مسٹیریم میں تو ڈیفینیٹلی. اور دوسری بات یہ کہ آپ لوگ موت بس کو جو ہے نا وہ وائٹ مسٹر ہے جو ابھی تک جتنی سوشل ڈیموکریٹ کی گورنمنٹس بنی ہے نا 2000 سے لے کے وہ ان میں شامل ہے. اور وہ فارمر پرائم منسٹر جو بڑا مشہور آپ کو پتا ہوگا پونیو راسموسن، وہ اس کا اسٹوڈنٹ ہے سو میرے خیال سے وہ فارن منسٹری کو سنبھال جائے گا. وہ فارن منسٹری کو اس طرح سے سنبھالے گا کہ میرا جو میں دائیں تو نہیں کر سکتا مگر وہ اس طرح سے سنبھالے گا کہ وہ بیلنس کی طرح سنبھالے گا. وہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ جس طرح باقی سارے کیا کہتے ہیں ہارڈ لائن کی طرف نہیں جائے گا. پہلے ہی آپ اس کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں تو اس نے یہ کہا ہے کہ میں جو کرائم کرتے ہیں، جیسے یہ اب میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک ٹاپ 10 لسٹ تھی جس کے اندر شاکنگ پوائنٹ تھا جس پہ

0: इन लोगों की मुलाकात जो है कोशिश करेंगे कि मॉडर्न बुस्को के साथ हो, ताकि जो हमारी जो रहने वाले जो हम 70s से लेके अब तक यहाँ रहने वाले फॉरनर्स हैं, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं और जो जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है उलेनिंग और इंट्रोगेशन के दरमियान, उसके ऊपर कोई वो हमसे बातचीत करे, तो क्या इसका कोई इम्कान है कि आप उनको टेबल पे लाने पे कामयाब हो जाएंगे?
1: राजेश साहब, मैं कोशिश कर सकता हूं और मुझे पता है कि वो हमें टाइम भी दे देंगे, और मैं ये इंशाल्लाह ताला आपकी रिक्वेस्ट होगी तो मैं कमिंग डेज में मचियर से बात कर लूंगा, क्योंकि अब वो तो कूपर फॉर्मैन है और वो यहाँ सिटी में ही रहता है। मैं उसको एक मेल लिखूंगा कि हमारी कम्युनिटी है तो तुम कोई मीटिंग अरेंज कर सकते हो, तो मैं 100% श्योर हूँ कि वो कोशिश अपनी तरफ से करेगा और इंशाल्लाह ताला समर, अभी तो ये समर वेकेशन पे चले जाएंगे और सितंबर अक्टूबर में वो डेफिनेटली जब वो अपनी क्या कहते हैं जिम्मेदारी संभाल लेगा और अपनी क्या कहते हैं सारी सूरत हाल
0: जी
1: देख लेगा, क्योंकि मैं ये आपको बता दूं कि वो आज ही काम पे शुरू हो गया हुआ है, और वो आज वो ब्रजल में है और दूसरा जस्टिस मिस्टर वो उधर है लुक्सम्बर्ग में। सो आप चाहेंगे तो हम कोशिश कर देंगे और कोई ना कोई मीटिंग जरूर हो जाएगी, और आप अपना जो पॉइंट्स उसके साथ डिस्कशन करना चाहेंगे वो मैं आपको बता दूं कि मैं उसको 2000 से सदी से जानता हूं, जब वो TSU का फॉर्मैन था, और वो हर चीज को नोट करता है और हर चीज को देखता है। और आपको मैं ये भी नॉलेज इंफॉर्मेशन दे दूं कि वो 2011 की जो हेलिचॉन स्मिथ की गवर्नमेंट थी उसके एक पीरियड में वो जस्टिस मिनिस्टर भी था, तो कोई वाकया हो गया था जिसके लिए वो डिसमिस्ड हो गया था, तो वो जस्टिस मिनिस्ट्री में भी रहा हुआ है और वो डिफेंस मिनिस्ट्री में भी रहा हुआ है, तो सर उसकी उसका क्या कहते हैं और पार्टी के अंदर वो फैंस का भी रहा हुआ है, सर उसका नॉलेज बहुत है, उसका क्या कहते हैं एक्सपीरियंस बहुत है, और वो एक अच्छा मिनिस्टर बन सकता है वो अपने पे रहे। ये नहीं कि उसमें एक चीज का फर्क बहुत है कि वो उस तरह जज्बे में नहीं आ जाता जिस तरह ये रास्मस स्टॉकलोन आता है, फर्क बहन आता है उस तरह वो के स्टेटमेंट्स नहीं देता वो, क्योंकि
0: जी
1: उसको पता
0: अच्छा
1: होता है कि किस कम्युनिटी के। और मैं आपको एक इंफॉर्मेशन ये दे दूं कि मैंने आज सुबह एक बंदे के थ्रू उसको एक मेल लिख दी हुई है कि ये जो वाकया हमारे हो रहे हैं मस्जिदों पे और उस पे, तो उसने मेरे उसको लिखने कहा था कि हम उसको ब्रीफ कर देंगे और डेफिनेटली वो रबता करेगा हमसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। मैंने उससे कहा कि ये बहुत
0: अदनान
1: सारे हाल
0: अदनान
1: खराब
0: अदनान अदनान, मैं
1: हो
0: आपसे लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए एक बात करना चाहता हूँ। क्या आप मुझसे एग्री करते हैं डेनिश कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो मजहबी जैसे हमारी मसाजिद हैं या सिनिकाल्स हैं यहूदियों के या चर्च हैं या दूसरी चीजें, ये चर्च मिनिस्ट्री के नीचे ये उसके अंदर रजिस्टर्ड होते हैं, लेकिन जो कल्चर है कल्चर सेंटर्स है, ये कल्चर दोनों के अंदर होते हैं, कल्चर मिनिस्ट्री के अंदर भी रजिस्टर्ड होते हैं और चर्च मिनिस्ट्री के अंदर भी होते हैं। क्योंकि जब आप उनको कहते हैं ना कि हमने एक सैली जो है वो बिल वेल्स है इसके अंदर रखा हुआ है, या हम कोई अपनी फ्यूनरल्स वगैरह के लिए करते हैं, लेकिन वो ऑफनली जो ये पॉइंट सबसे बड़ा ये है कि क्या वो ऑफनली उनको मस्जिद की हैसियत हासिल होती है या कि वो एज ए कल्चर सेंटर होता है?
1: राज साहब, सॉरी शाह साहब, जो जो 80 जो 70 से 80% है ना वो कल्चर सेंटर डेनमार्क में, क्योंकि मस्जिद की इजाजत लेने के लिए एक लैदा पसीस होता है और एक लैदा लैदा क्या कहते हैं प्रोग्रेस होता है, और उसकी मोटी एग्जांपल यही है कि आप देखें हेल्सिंग में वो मस्जिद बनाना चाहते थे रियल मस्जिद, और आप देख लें कि उसकी कितनी मुसीबत पड़ी थी और कितनी क्या कहते हैं था, तो जो रजिस्टिंग्स है ना जो मेरी नॉलेज में है वो यही है कि 75% जो है ना वो कल्चर सेंटर से रजिस्टर है, और कल्चर सेंटर की जो चीजें होती हैं वो कल्चर सेंटर के अंदर होती हैं, मगर हो सकता है कि वो मिस्ट्री चेक करी हो, क्योंकि मुझे याद है कि इसका एक पता नहीं 2 या 3 साल पहले एक मिस्टर को आया था और उसके अंदर 3-4 मिस्टरों ने फिर इसका जवाब दिया था, क्योंकि वो जस्टिस मिनिस्टर भी था, होम मिनिस्टर भी था, انگلش میں اس طبی تھا.

0: खुद सैदा हो गए
1: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए
0: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा
1: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा
0: काफिर मुसलमान हो गए
1: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम

0: चल रहे हैं, और जैसे ही जमातों के इलेक्शन के बाद रिजल्ट आया है, वो आपने देखा है कि अवाम ने ऐसे ही लोगों को ऐसे मुंतखब किया है कि उन्होंने ये बता दिया है जी कि आप जो हमारे अगर मुतालबात जो हमारी चीजें सही सीमत में नहीं लेके आते तो आपका यही असर करेंगे। इतनी बड़ी पार्टी जो कि 50 से ऊपर मैंडेट लेती थी, सोशल डेमोक्रेट वो 38 पे आ गई है, ऐसी और भी पार्टियां जो जिन्होंने कम मैंडेट हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो हुकूमत बनी है ये मुल्क के लिए और आवाम के लिए कुछ ना कुछ जरूर बेहतर जो है वो चीजें ले। अभी शुरू शुरू में आपको पता है तनकीद भी होगी, बेशुमार चीजें ऐसी आएंगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अभी 3-4 महीने 6 महीने में आफ्टर यूल कह लें नया साल जब स्टार्ट होगा तो फाइनेंस लो फाइनेंस का जो जब स्टार्ट होता है साल, तो फिर मुझे उम्मीद है किसी न किसी चीज में बेहतरी आएगी। जैसे उन्होंने कहा है फुकरून के ऊपर से हमने मम्स उठा लिया है और चीजों पे हम ऐसे कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट का वो सोच रहे हैं 22 साल तक, और भी काफी चीजें जो है कि पाइपलाइन में है। अदनान को और मोहतरम शाह साहब को बेहतर पता है, लेकिन मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह ये हुकूमत जो है अगर इसने अपनी कारकर्दगी दिखाई तो ये कामयाब होगी, नहीं कारकर्दगी दिखाएगी तो शर तो फिर आपको पता है अवाम यहाँ पे तो डेमोक्रेसी चलती है, अपने वोट के जरिए हुकूमतों को आगे पीछे ये करते रहते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह डेनमार्क के लिए बेहतरी होगी।
1: बहुत शुक्रिया मुजीब साहब। अदनान, आपने दोनों साथियों की बातें सुनी, उन्होंने बताया डिमांड्स भी कर रहे हैं, तो आपने देखा जिस दिन हुकूमत बनी सारे वज़रा जो है मिनिस्टर्स बाहर आ रहे थे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज देख लें कि सब जो है माशाल्लाह बड़े खुश थे, जैसे कोई मैदान जो है वो फतह करके बाहर निकले हैं। तो अब ये मुजीब साहब ने फरमाया कि इन सिस्टर ने कहा जी कि दांतों का इलाज फ्री होगा, तो ये सारी चीज़ें आप पहले से भी नोट करते रहते हैं, तो एज ए तजिया निगार आप इन चीज़ों को किस तरह देख रहे हैं?
2: राजा साहब, मैं इसमें ये कहूंगा कि आज कौन लोग थे था, और यहाँ पे जैसे आपको पता है फॉर्मल एजुकेशन मिनिस्टर जो मच्छी से फायर था वो भी आ जाया हुआ था, और वो कोपे फॉर्म है ना जो जो पार्टी को लीड करता है, और उससे सबकी बात हो रही थी, तो उसने एक ब्रेकिंग न्यूज हमें दी थी कि मैं फैंसोर बैल में बैठा हूँ जहाँ से ये सारे पैसे वगैरह निकलते हैं। तो वो यही कह रहा था कि आप सब ने एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमने जो वादे किए हैं ना उनको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे, और अभी हम उस पे क्या कहते हैं पूरा हमने जो प्लान है वो एक प्लान बना बैठा हुआ है, मगर उसके अंदर ये है कि आस्ता आस्ता चीजें जो है ना वो बाहर आएंगी। सबसे पहले प्रायोरिटी मैं आपको कह दूं जिस तरह ये मजीद साहब ने कहा है कि इनकी ये है कि ये मॉम्स वगैरह इसको क्या कहते हैं खत्म करना है और इसको कंट्रोल करना है, और बेंजीन को और डीजल और इन चीजों को देखना। उसके बाद इनका प्लान ये है कि ये जो डिबेट शुरू हो गई है ना कि पहली मुसलमान बन गई है तो ये एक क्या कहते हैं एक सारी मुल्क है तो हम उस तरफ जाने की जरूरत है, मगर उसमें भी एक मसाइल है जो बात अब क्लियर की जाए कि बंदे ने ये भी देखना है कि मुस्लिम वर्ल्ड के साथ इनका BMP GMP बिजनेस कितना है, तो इनने ये भी बैलेंस रखना है कि इनकी इकोनॉमी कैसे चले। आप पूरा पंगा डाल लें मुस्लिम के साथ तो आपके कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं कि मौत मेरे समझ ने ज्यादा ही क्या कहते हैं बात करने की जरूरत होती है, मगर बंदे को थोड़ा बहुत क्या कहते हैं सीरियस भी होना पड़ता है और हर चीज को देखना पड़ता है, और हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि जब मेरे फर्स्ट बैठ जाएगी हमारा रूलिंग मिनिस्टर भी बैठ जाएगा तो हम इससे जरा बात करने की कोशिश करेंगे कि आप लोग जरा सब्र करें और थोड़ी क्या कहते हैं आप लोग ये देखें कि इसके अंदर मुसलमान को टारगेट करने का क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो मैं आपको एक छोटी सारी मिसाल दे देता हूँ कि मैंने आज कुछ लोग कुछ जगह पे हम लोग गए और हमने वहां पे देखा कि मुसलमान बाहर हो जाएं तो 70% चीज ही नहीं बचल, तो इसलिए ये तो थोड़ी बहुत सेंसिबल बात करनी चाहिए और सेंसिबल देखना चाहिए। बोलना बड़ा आसान होता है, काम करना बड़ा मुश्किल होता है। इतना आसान होता तो मिस्टर स्मिथ को जब मौका मिला था ना गवर्नमेंट बनाने का तो गवर्नमेंट बना लेता, मगर उसने नहीं लिया चांसेस, तब उसकी मर्जी, आप दूसरे जिन्हें चांसेस दिए उनको बैठने दे और उनको काम करने दे और उसको मौका तो देंगे, वो तो कोई उसको हमने बात तो नहीं निकाला हुआ, कोई काम करना चाहेगा तो सोबत बिना टेबल पे आ जाए, उसकी अपनी मर्जी है, बैठ के बोलना चाहते हैं बोलता रहे, मगर हम लोगों ने जिनने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है उन लोगों ने तो काम करना है और इस मुल्क को चलाना है किसी ना किसी तरह, तो ये तो अब उसकी मर्जी है कि वो क्या करना चाहते हैं।
1: शाह साहब, जब आइन कहता है कि इलेक्शन लड़ने की उसमें कोई ऐसी बात नहीं है तो फिर ये डेनिश पीपल्स पार्टी या

0: दूसरे सियासतदान इस तरह की बातें नफरत अंगेज आपस में जो है वो दूसरे के साथ नफरत की जाए सिर्फ वोटों के लिए, तो ये क्यों की जाती है ऐसी बातें?
1: जी बिल्कुल सही आपने ये सवाल किया है, बड़ा रेलिवेंट सवाल है। इसकी वजूहात हम खुद लोग बने हैं। हम लोगों में चंद अनासर ऐसे हैं जिन्होंने इस कानून को तोड़ा है और इनके टैक्स पेयर की रकमों को मिलियंस के अंदर उन्होंने चीट किया और दुबई और दूसरे ममालिक में भाग गए। फिर हमारे जो रवैये हैं हमारे यंगस्टर्स के, वो मर्सिडीज गाड़ियों और दूसरी गाड़ियों को लंबी लाइनें लगी होती हैं और वो सिंगल फुटपाथ पे चला कर गाड़ियों और लेकर जाते हैं। तो ये जो डैनिश है ये राशिस्ट नहीं है। हमें खुद अपने आप को संवारना है, हमें खुद ठीक करना है। लेकिन जैसे कि अभी अदनान ने कहा, मैं इसकी बात पे बिल्कुल तायद करता हूँ कि गवर्नमेंट जो है इसको अब टर्नओवर लेना पड़ेगा, क्योंकि अब हालात जो है वो मुस्लिम कंट्रीज के हाथ में है और जो इंटरनेशनल मौसम है वो काफी तब्दील हो रहा है और इसके अंदर इनको जो है अब ये प्रेशराइज होंगे। मेरा ख्याल है कि गर्मियों की छुट्टियों के दौरान ही हमें यहाँ के हालात जो है वो वाजह होने शुरू हो जाएंगे। बाकी ट्रांसपोर्ट जो इन्होंने कहा है कि 22 साल तक हम फ्री करेंगे, वो इनको पहले से कर देनी चाहिए क्योंकि आगे तो छुट्टियां आ रही हैं, बच्चों ने अब एग्जाम दिए, वो तो सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन जो पेंशनिस्टों के लिए इन्होंने मुश्किलात खड़ी की हैं कि अभी तक 4 किस्म की पेंशन यहाँ पे मिल रही है लोगों को और बाद पेंशनिस्ट जो है जिनको 2003 के बाद पेंशन मिली है यहाँ पे पेंशन। देखें जो अरीना पेंशन है उसके अंदर मसला सबसे बड़ा यह है कि खुदा ना खासा कोई आदमी काम कर रहा है उसका एक्सीडेंट हो जाता है या वो बीमार कोई ऐसे ही उसके साथ आफत आ जाती है कि वो उसको मजबूरन पेंशन पे जाना जाता है, तो उसको वो पैसे नहीं मिलते जो पहले हमारे जैसे हम लोगों ने 40 पेंशन ली या हम लोगों ने पेंशने दी हैं फुल पेंशने, इनमें उन्होंने काफी डिफरेंस किया है। अब देखते हैं कि ये क्या करते हैं और क्या नहीं करते, लेकिन उम्मीद ये है कि जो बेटे फ्रेडरिकसन है वो ग्रीनलैंड के हालात को देखते हुए और इंटरनेशनल हालात को देखते हुए डेनमार्क के अंदर हो सकता है, मेरा ये अंदाजा है कि वो गर्मियों की छुट्टियों में कोई ना कोई यहाँ पे करवट लेगी और इसके डेनमार्क की जो बची कुची साख है उसको बेहतर करेगी और मुसलमानों के साथ बेहतर तल्लक करेगी। जैसे कि अदनान ने कहा यहाँ पे जो इस वक्त 65% डॉक्टर्स हैं वो मुसलमान हैं, यहाँ के इंजीनियर्स और बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हैं वो मुसलमान हैं और यहाँ के जितनी भी आपकी ट्रांसपोर्ट चल रही है उसके अंदर मेजॉरिटी जो है वो फॉरनर्स हैं और पाकिस्तानी हैं मुसलमान हैं, तो इनका काम नहीं चल सकता, लिहाजा इनको जो है वो मैन पावर की जरूरत है। और वो
0: तो शाह साहब क्या इनिस लिस्टन जो है अपने वादों पर कायम रहेगी कि जो उन्होंने कहा कि जो भी पार्टियां कह रही हैं कि पेंशन बढ़ाएंगे और ये दांतों का इलाज जो है फ्री होगा ट्रांसपोर्ट फ्री होगी, क्या ये पार्टियां अपने मौकों पर कायम रहेंगी?
1: देखिए जी मैं आपको एक बात बता दूं कि इनिस लिस्टन की बात जो है वो सुनी जाएगी, बाकी जो है क्योंकि उन्होंने मिनिस्ट्रियां ले ली हैं वो एंजॉय करेंगे और इनिस लिस्टन को इसलिए रखेंगे कि कहीं इनिस लिस्टन जो है वो ब्लू ब्लॉक के साथ मिलके इनको कोई प्रॉब्लम लाइन के लिए क्रिएट कर सके,
0: सियासी फटाक हैं ये।
1: हाँ जी, इसलिए ये कोशिश यही करेंगे कि इनिस लिस्टन जो है ये इसकी बात माने और इसके जो बाकी पार्टियों को देखे ना कोई सामने नहीं आया, एसएफ का कोई सामने नहीं आया, रेडिकल का अभी तक मुतालबा कोई सामने नहीं आया, ना ही मॉडरेट का कोई मुतालबा सामने आया है कि भाई इन्होंने कौन कौन से जो है मुतालबे सामने रखे हैं। लेकिन अब ये कह रहे हैं तजिया नगार कि भाई बेटे फ्रेडरिकसन वापस आएगी तो ये एक दफा दोबारा बैठेंगे और फिर उसके ऊपर ये फैसला करेंगे कि किस किस पार्टी की कौन कौन सी, लेकिन मैं इस चीज को नहीं मानता क्योंकि ये तो अमेरिकी बोर्ड के अंदर पहले ही फैसले हो चुके हैं कि कौन सी चीज लागू की जानी है और किस चीज को जो है वो डिले करके अगले सालों पे डाला जाना चाहिए। اور یہ معاہدہ تو ان کے ہو گئے ہیں, اب واضح کریں کہ کس طریقے سے
0: چلیں. جب تک پوری جو چیز کلیئر نہیں ہوگی, صفحے پورے سارے ننگے نہیں ہوں گے. مجیب صاحب, آپ کی ایس ایف پارٹی ہے تو آپ کی پارٹی بھی تو ڈیفینیٹ پریشرائز ہوگی.
2: دیکھیں جی, میں دونوں اپنے ساتھیوں کی بات سن رہا ہوں, بڑی اچھی ماشاء اللہ تجزیہ نگاہ رہے ہیں دونوں, بڑے اچھے طریقے سے ہر چیز کو پیش کرتے ہیں. میں نے شروع میں کہا کہ میرا خیال ہے جو نیا سال شروع ہوگا 2027, شروع میں ہی میرا خیال ہے آگے چیزیں آگے باہر آئیں گی. ابھی سارا کچھ جتنی بھی یہ پلاننگ ہے وہ ہوئی ہے یا ہو رہی ہے, وہ اس کو پایا تکمیل پہنچانے کے لیے تھوڑے سے ان کو اور ٹائم لگے گا, کیونکہ اب حکومت بن گئی ہے, اور حکومت بننے کے بعد آپ کو پتا ہے ذمہ داریاں آ جاتی ہیں. ایس ایف 12 سال کے بعد دوبارہ حکومت کے اندر آئی ہے, تو ظاہر سی بات ہے ان کے پاس 5 منسٹری ہیں اگر, تو وہ اپنی منسٹریوں کا کارکردگی پیش کریں گے تو آئندہ الیکشن میں ان کو کوئی کامیابی حاصل ہوگی, ورنہ تو پھر جیسا میں نے بتایا کہ جو چند جماعتوں کا حال ہوا ہے ان کا بھی ایسا ہی حال ہو جائے گا. لیکن ضروری چیز یہی ہے کہ میرا خیال ہے کہ ابھی صرف 2 دن ہوئے ہیں اعلان ہوا ہے, ابھی انتظار کریں. میرا جہاں تک اندازہ ہے, میں اپنا کہہ سکتا ہوں, یہ جو 3-4 مہینے ہوں گے یہ دسمبر تک, یہ انہیں چیزوں میں ہی ہوں گے کہ کیسے پہننگ ہونی, کیا چیز آگے لے کے آنی ہے, کیا چیز ابھی پیش کرنی ہے, کیا چیز 2027 میں ہے, کیا چیز 28 میں ہے. تو میرے خیال سٹارٹ انہوں نے لینا ہے چند چیزوں سے, اور اس پہ وہ سارے متفق ہوں گے. ان لسٹ اس لیے مضبوط رہے گی کہ ان کا یہ مطالبہ اگر مانا جاتا ہے جی کہ تھن لے جو ہے ڈنمارک میں فری ہو جائے, تو آپ کا اگر آپ کے پاس ابھی اگر 15 سیٹیں ہیں تو ریلیکس ہیں تو 25-30 سیٹیں لے جائیں گے, کیونکہ یہ بہت بڑا مطالبہ ہے, اور یہ ڈنمارک کی سب سے مہنگی جو ہے نا ٹریٹمنٹ ہے تھن لے کی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بہت اچھی فیصلہ ہے, اور باقی جماعتوں کو اس کے اوپر ایگری ہونا چاہیے. اور میں ایک اور چیز بالکل واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ ابھی جو جماعتیں جنہوں نے یہ حکومت بنائی ہے, ہمارے محترم شاہ صاحب کہتے ہوتے ہیں یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں, تو یہ اگر انہوں نے کامیاب ہونا ہے تو انہوں نے اپنے عوام کی طرف دیکھنا ہے. جیسے نان نے بتایا ہے پیٹرول ہے, جیسے میں نے کہا ہے ممس فری ہے, کرون فروغ, اور اس کے بعد اور چیزوں کے اوپر بھی افرو, وہاں پہ بھی انہوں نے ممس کا کچھ سوچنا ہے. تو یہ چیزیں اگر بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی تو عوام کو سہولت ملے گی, تو میرا خیال ہے حکومت کامیاب ہو. جیسے شاہ صاحب نے بتایا گرین لینڈ مسئلہ ہے, اور چیزیں مسئلے میں انٹرنیشنل لیول پہ ہے, ابھی دیکھ لیں مسلم کنٹریز جو ہے اس وقت ان کے اندر اتفاق ہے, اور کسی صورت میں بھی اب یہاں پہ جیسے شاہ صاحب نے تفصیل بتایا کہ تمام ایریاز کے اندر جو ہے نا مسلم کمیونٹی جو ہے اور فارن جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, اور اچھی جگہ پہ کام کر رہے ہیں اور اچھی پوسٹوں پہ کام کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اب اس چیز پہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں یہ نفرت کی سیاست ختم کرنی چاہیے, ہمیں جو ہے رواداری والی, اور ہمیں جو ہے مل جل کے ہم ڈنمارک میں رہ رہے ہیں, 50% سے زیادہ ہم ٹیکس دے رہے ہیں, ہمارا رائٹس ہے, ہمارے حق ہیں, اگر ہم ٹھیک ہیں. ہاں, اگر ہمارے اندر کچھ چند لوگ کوئی اگر ایسا کام کرتے ہیں کرمنلٹی والا کام کرتے ہیں تو ان کو تو رائٹ ہے, ان کو سزا ملنی چاہیے, لیکن جو باقی لوگ ہیں اگر 5% ایسے ہیں تو 95% جو اچھے طریقے سے اپنا ٹیکس دے رہے ہیں, اپنا کاروبار کر رہے ہیں, اپنی نوکریاں کر رہے ہیں, ان کے حقوق سلب نہ کیے جائیں, ان کے حقوق اور ان کی جو چیزیں ان کو بہتر کیا جائے. حکومت کی کامیابی کا راز یہی ہوگا کہ وہ آہستہ آہستہ آہستہ چند چیزیں جو ہے وہ شروع کر دیں, تاکہ جو لوگوں کا تھوڑا سا جو ہوتا ہے نا کیا کہتے ہیں اعتبار, وہ ٹھہر جائے. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ حکومت جو ہے وہ بہتر کام کرے گی.
0: اذان اب کلوزنگ کرتے ہیں, تو آپ نے ان کی باتیں سنی, تو آپ کا جو سوشل ڈیموکریٹ کے گروپ فور مین ہے وہ تو غیر ملکیوں کو جانتے ہیں, تو لیکن جب غیر ملکیوں میں کوئی ایک آدھ کوئی عنصر ہوتا ہے, کوئی غلطی کرتا ہے, تو سزا اس کو ملنی چاہیے, نہ کہ پوری سسٹم کو ملنی چاہیے, پورے اوورسیز کو ملنی چاہیے یا پورے ڈنمارک کے لوگوں کو ملنی چاہیے.
3: نہیں رضا صاحب, وہی بات میں آپ کو کہہ دوں کہ وہ یہی اس پہ آج کا ہے کہ ہم نے اسی لیے جو اسٹیٹمنٹس دیے تھے الیکشن کے اندر, وہ یہی دیے تھے کہ ہم ان کے پیچھے جائیں گے جن نے کرائم کیا ہوا ہے, اور جو اس ملک کا کیا کہتے ہیں کوئی بینیفٹ نہیں کرنا چاہتے, اور ہم ان کے پیچھے ہی جائیں گے, باقی ہم کسی کو ٹارگٹ نہیں کریں گے, کیونکہ ہمیں ٹارگٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ ہمیں ان لوگوں کی ضرورت ہے جو دن رات محنت اس ملک میں کرتے ہیں, ان کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ کمنگ ڈیز میں ہو جائے گا. اور میں کلوزنگ میں آپ کو ایک چیز یہ بتا دوں کہ گورنمنٹ جو بیٹھی ہوئی ہے نا اس وقت, اور جو سیٹنگ گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے, ان کے لیے ایک ویورز کے لیے اور سب کے لیے میں انفارمیشن دے دوں, وہ سارے کام شروع کریں گے, مگر ان کی ایک مسئلہ ان کے لیے یہ ہے کہ آج 5 جون ہو گیا, اور کمون کے اور ویکیونز کے جو بجٹ ہوتے ہیں وہ ان نے نیگوشیشن کر لیے ہوتے ہیں اور کمون کو بھیج دیے ہوتے ہیں کہ وہ سمر ویکیشن جانے سے پہلے जो होती है 31, 32, 33, 34 कमूनों की ज्यादातर, कि उसमें वो थोड़ा बहुत काम कर ले। तो इसलिए वो एक मंथ उसमें डिलेट हो चुकी हुई हैं। तो इसलिए जो गवर्नमेंट की फर्स्ट पीरियड है इस वक्त, वो ये है कि कमून का और रीजन का बजट वो नेक्स्ट वीक बैठ के कम्यूनस लेंस फाइनिंग और रेग्यून्स वो के साथ, टेमस रेग्यून के साथ मिल के बना लें। उसके बाद वो फिर जो होता है फेयर बजट नेक्स्ट ईयर का, वो भी जुलाई में तैयार कर लें। तो उसके बाद फिर वो क्या कहते हैं, जो अपना काम है ना, अगस्त में अपना ट्रैक पे शुरू कर देंगे। इसलिए उनकी कुछ क्या कहते हैं चीजें हैं जिसपे वो पीछे हैं, इसलिए वो क्या कहते हैं इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि एक और इन्फॉर्मेशन दाते दे रहे हैं कि जो उलवेल होती है ना, पॉलिटिकल उलवेल जिस तरह होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगी, फैंस उलवेल होगी, इकोनॉमी उलवेल होगी, उमस पुलिस नेम होगी, ये दूसरी पार्टियों ने इस वीकेंड में अपने नाम वगैरह बना देने हैं। वो जब कमेटियां बन जाएंगी तो फिर मिस्टर बैठ के उनके साथ अपने काम शुरू कर देंगे। तो इसलिए थोड़ा बहुत क्या कहते हैं लोगों के लिए ये बड़ा जरूरी है कि सब कुछ जब बन जाएगा तो आस्ता आस्ता कमून के भी काम शुरू हो जाएंगे। मगर फिर होम को जो फेंस मिनिस्टर है, जो जस्टिस मिनिस्टर है निकोला वामिंग, ये इनकी फर्स्ट पीरियड यही है कि ये जो कमून के बजट है और रीजन के बजट है ये बन जाए। तो उसके बाद, क्योंकि ये डिलेट हो चुके हुए हैं, ये नॉर्मली मई में पता चल जाता है मगर जून आ गया तो ये नहीं बने हुए, तो इसलिए इन पे थोड़ा प्रेशर है कि इनके साथ ये बैठ जाए। जहां तक हमारी इंफॉर्मेशन है ये मंडे को इनकी मीटिंग शुरू हो जाएंगी, वैसे कल ही वीकेंड में हो जाएगी हमें नहीं पता, मगर फिर इसके बाद वो अपना काम शुरू कर देंगे तकरीबन आप समझें कि। और दूसरी बात, एक और चीज कि पार्लियामेंट जो है ना उसकी वकेशन होती है, तो वो लॉ फैसले जो बनने होते हैं वो बनते हैं 1 जून से लेके 1 अक्टूबर तक, ज्यादातर वो छुट्टियों पे होते हैं। तो जितने लॉ फैसले बनेंगे वो जाके अक्टूबर से बनेंगे जब ये वापस आएंगे। अब मुझे नहीं पता कि ये अपनी समय पे काम करते हैं कि नहीं करते, इसकी हमें कोई इत्तला नहीं, मगर वैसे पार्लियामेंट जो होती है वो 1 जून से लेके 1 अक्टूबर तक वोकेशन पे होती है, कोई लॉ फैसले नहीं पास होता, खाली फेंस लॉ के अलावा ना कोई एमरजेंसी चीज हो जाए। तो ये भी बहुत सारी चीजें तब्दीली हैं, ये कमिंग डेज में पता चलेगा कब कैसे सूरत हाल बनती है।
0: शाह साहब, क्लोजिंग की तरफ चलते हैं कि इस हुकूमत ने किया क्या, ये 3-3 महीने छुट्टियां करती है और जो वादे किए हैं शाह साहब ये पूरे करेंगे?
4: बिल्कुल अदनान ने बहुत अच्छी बात की है। ये वादे अभी इसलिए इनको डिफिकल्टी आएगी क्योंकि इनके पास सरमाया नहीं, इन्होंने सरमाया जो है वो बड़े गलत तरीके से कम्यूनों की जो सेविंग थी वो लेके पिछले साल इन्होंने सारी यूक्रेन को दे दी, अपने चीजें दे दी, फिर उसको कवर करने के लिए इन्होंने अपने डिफेंस को कवर करने के लिए इन्होंने पिछले साल बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया है और इसलिए इनके पास अभी इनको मुश्किलात आएंगी। आप कम्यूनों का ये असर देख लें कि यहाँ पे गंदगी पड़ी हुई है सड़कों के ऊपर, साइडों पे ऊपर घास बड़े हुए हैं, इनके पास पैसा नहीं है। हमारे काउंसलर्स जो हैं, हुआ वो डेनिश हो, फॉरनर्स हो, जो भी हो, ये उनका काम बनता है कि सबसे पहले जैसे डेनमार्क एक नाइस और क्लीन कंट्री होता था, अब ये बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे आप इंग्लैंड में गए हुए हैं और उतरते हैं तो देखते हैं कि हर तरफ जो है वो गंदगी गंदगी नजर आती है, यही हिसाब अब यहाँ पे नजर आना शुरू हो गया है और इससे जो है वो हमारे हालात जो है वो खराब है। दूसरी चीज यह है कि जो बच्चों के लिए है, इनको सबसे पहले ये चाहिए कि बच्चों के लिए जो बान हेमन है, बास बान हेमन में बहुत हाई किस्म की, जिनके 3-3, 4-4 बच्चे हैं या ज्यादा बच्चे हैं स्कूल में जाने की, उनको जो पैसे देने पड़ते हैं पास है पेरेंट्स को, उसको कम करना चाहिए। और ये हर मुल्क कम्यून से कम्यून जो है ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरे मुल्क के अंदर ये होना चाहिए कि अगर कोपनहेगन में एक बच्चे के 500 हैं तो फिर यूलैंड में भी एक बच्चे के 500 होना चाहिए। इसके ऊपर काम होना चाहिए, इसके ऊपर लिखना चाहिए। दूसरा जो वेलफेयर है, इसके ऊपर मुझे ये लगता है कि ये सिर्फ ये करेंगे कि जैसे मजीब कुरैशी मेरे भाई ने कहा कि थैंडे जो है ये कुछ थोड़ा सा कम कर देंगे, कम्यूने जो है वो थोड़ी सी सपोर्ट कर देंगी, लेकिन इसके साथ अगर आप ये देखें कि बसों का, तो बसें जो है
1: कम्यून भी बसों को छूट देती है, बल्कि उनकी इमदाद करती है। इसी तरीके से रिजून भी उनकी मदद करती है। तो ये बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग है जो कम्यूनों के ऊपर पड़ती है, क्योंकि बसें जो हैं वो चलाने के लिए जो कंपनी है उनकी वाहवा है, और उनके उनको चाहिए कि जो वो टिकट लेते हैं या जो उनके अंदर मुसाफिर जाते हैं उनको भी दूसरी कंपनियों की तरह टैक्स देना चाहिए। जैसे कि टैक्सी ड्राइवर्स या दूसरी प्राइवेट लिमोसिन वगैरह हैं वो टैक्स देते हैं, इनको भी चाहिए कि ये गवर्नमेंट से पैसा लेने की बजाय, इमदाद लेने की बजाय, ये यहाँ तो अगर गवर्नमेंट से इमदाद लेते हैं तो फिर इनको चाहिए कि पेंशनिस्टों को, जो हैंडीकैप है इनको, और जो स्कूल और कॉलेज के बच्चे हैं इनको बिल्कुल फ्री कर देना चाहिए। जी राजा साहब,
0: चारों से सवाल है, हाँ और ना में जवाब देना है, इसको अगले हफ्ते डिबेट की तरफ लेकर जाएंगे। मजीब साहब, आप क्या समझते हैं, पेंशनिस्टों के लिए बस पास, ट्रेन पास ये सारा फ्री होना चाहिए, एनओकों का इलाज और इसी तरह एनके फ्री होनी चाहिए, इसी तरह जो बाकी दांतों का इलाज जो फ्री होना चाहिए, आप क्या कहेंगे, हाँ और ना में जवाब देना है आपने।
2: जी बिल्कुल होना चाहिए। मैं सिर्फ एक चीज, सिर्फ एक मिनट, सिर्फ आधा मिनट लूंगा। बिल्कुल होना चाहिए, ये सारी चीजें जो आपने गिनवाई हैं ये सारी इनके लिए फ्री होनी चाहिए। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, क्योंकि आपको पता है कि पेंशन जो है वह हर बंदे को 8 से लेकर 10,000 पाउंड मिलती है, तो उसमें तो गुजारा भी इतना आसान नहीं होता। मैं एक चीज, क्योंकि जो जो नई गवर्नमेंट के लिए जो मसला मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि ये आ रही है, खबरों में भी आ रहा है और सुना भी जा रहा है, कि ये हो सकता है टैक्स को ना थोड़ा सा बढ़ाएं, तो उसमें देखना पड़ेगा कि आया ये टैक्स बढ़ाते हैं तो मराहत कहाँ पे है, अगर टैक्स बढ़ जाता है तो आसानियां कहाँ पे है। तो जो आपने चीजें गिनवाई हैं पेंशनिस्ट के लिए, जो खास साहब ने मोहतरम कहा है कि बस के लिए जो किराए वगैरह है, ये जैसे स्टूडेंट है उन सब के लिए ये सहूलतें, उनसे खासकर जो जो बाने फैमिली है जिनके बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको भी एक्स्ट्रा इमदाद मिलनी चाहिए। आज आप देखें ना, हम 50-50 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, आज आप किसी सुपर मार्केट में जाए, आपके पास एक 1,000 करोड़ का अगर आपने सौदा ले रहे हैं तो आपका एक तो थैला भी नहीं भरता। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर हुकूमत को बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, और जो चीजें आपने बताई हैं वो पेंशनिस्ट के लिए फ्री होनी चाहिए।
0: जी शाह साहब, फ्री होनी चाहिए और नाम है
1: ये बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। इसके अंदर ये है कि पेंशनिस्टों को जो बोली दी है इन्होंने, वो बोली आप हैरान होंगे कि वो वेस्टाइन और कोपेनहेगन में वो बोली जो है वो अनमेनली बोली जो है, अनमेनली बोली सेल्स के जो किराए पे कमरे देते हैं, लाइरी देते हैं, उससे ज्यादा महंगे हैं। तो लिहाजा ये कोशिश ये करनी चाहिए कि हर बंदे ने जो पेंशनिस्ट चला जाता है, या खुदा ना करे वो फोर्सेस पेंशन पे चला जाता है, बीमार हो जाता है, तो उसके लिए जो किराया है वो जिस तरह 70s और 80s में होता था उस तरीके से उनको हाफ किराया देना चाहिए। अब हैरानगी की बात है कि लोगों की इतनी पेंशन नहीं है जितने के ज्यादा वो अपना पेंशनिस्ट जो है वो दे रहे हैं, हौसला है। फिर दूसरी सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पे, सबसे बड़ी गड़बड़ जो है कि दो घर के फर्द जो हैं वो दिन रात काम करते हैं, जब वो दोनों पेंशन के एज पे पहुंचते हैं तो एक को कम पेंशन मिलती है और दूसरे को ज्यादा पेंशन मिलती है। वो उसका बहाना ये करती है गवर्नमेंट कि देखे जी ये तो हुस्टन इनकम, ये जो सिलसिला है हुस्टन इनकम का ये खत्म करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरीके से लोगों के जो पास बचत है वो ज्यादा होगी। अगर दोनों को बराबर का पेंशन मिलेगी तो वो खुशहाल तरीके से रहेंगे। इस वक्त पेंशनर्स और बच्चों वाली फैमिली जो है वो बहुत ज्यादा दबी हुई है, इकोनॉमिकली उनके ऊपर बहुत बंडल है। जी राजू साहब,
0: जी अदनान, आखिर में आपसे भी ये सवाल सारे आपके साथ, आपने सुन लिए, सबके जवाब भी सुन लिए, और आखिर में आप क्या कहेंगे?
3: ये ऐसे ही होना चाहिए, और इसके लिए मैं यही कहूंगा कि इस पे इंशाल्लाह ताला काम भी किया जाएगा और इसके लिए हल भी निकाले जाएंगे और इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा। जैसे कहा गया है कुछ चीजें प्रेशर पे है, पर इंशाल्लाह ताला इस पे अब काम किया जाएगा और इस पे देखा भी जाएगा, और कमिंग डेज में जैसे जैसे हमें तलाब मिलेंगी कि फ्रेंचली कैसे है तो भी उसको बताएंगे।
0: अदनान आपका बहुत शुक्रिया, शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, मजीब साहब आपका बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा आएंगे।
2: इंशाल्लाह
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।
0: سامعین ناظرین، یہ تھے عدنان علی امین، سید توقیر حسن بخاری شاہ صاحب، مجیب الرحمان قریشی صاحب، انہوں نے جو کچھ کہا آپ نے سنا، ہم نے چھوٹے چھوٹے سوال بھی کیے، ان کی رائے بھی لی۔ سامعین ناظرین، آپ کو بھی دھیان دینا چاہیے، ہمارا کار کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے، آپ اچھی کوئی چیز رائے دینا چاہتے ہیں، ٹائم لینا چاہتے ہیں، تو ادھر آپ کی آواز کا ٹائم آپ کے لیے حاضر ہے۔

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व सय्यदिल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व असहाबिही अजमाईन।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बिरादरान इस्लाम, दुरूस-ए साबका में सीरत सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाब में हमने कुछ बातें अर्ज की। कुछ जिक्र तो था जजीरा अरब के बारे में कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इस जजीरा अरब का क्या हाल था, क्योंकि अल्लाह ने हुजूर की बेसत के साथ इसका कुरान में भी खास तौर पे जिक्र किया है कि वइन कानू मिन कब्ल लफी दलाल मुबीन, कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले ये लोग खुली गुमराही में पड़े। तो उसके बारे में हमने कुछ बातें अर्ज की और फिर उसके बाद वो मुबशरात और वो मुअश्शरात, मुअश्शरात का माना यानी वो इशारात, मुबशरात का माना होता है किसी चीज के बारे में खुशखबरियां। तो ये मैंने सीरत के पहलू से पहले अर्ज किया था कि ये सारी चीजें ऐसे नहीं है कि खुद ब खुद एक इत्तेफाक है, बल्कि ये बिल्कुल अगर आदमी बड़े तअम्मुल से, गौर से, फिक्र से सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के हर पहलू पे नजर डाले तो समझ आता है कि खाले के कायनात ने ये सारा इंतजाम, ये सारी बिसात जो है ये इसीलिए बिछाई गई। ये ऐसा नहीं कि इत्तेफाक ऐसा हो जाए, यानी आप किसी भी पहलू पे नजर डालें। यही मैंने अर्ज किया था कि उस वक्त दुनिया में दो सुपर पावर्स थी, एक रूम और एक फारस, लेकिन ये सरजमीन हिजाज एक जमीन थी जिसपे दोनों सुपर पावर का कंट्रोल नहीं था। तो अल्लाह तबारक व तआला का इस खित्ते को मंतखब करना हुजूर की विलादत के लिए, तो इसमें आखिर कोई बात तो ऐसी थी कि दो ताकतें एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, एक मावरा नहर तुर्कमेनिस्तान की तरफ और एक अल्बानिया से लेकर हबशा से लेकर यहां तक ये दोनों ताकतें बाहर से घिरे हुए हैं, लेकिन ये दरमियानी टुकड़ा किसी के तसल्लत पे नहीं। और अल्लाह पाक ने इसी जगह अपने उस आखिरी नबी खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया, क्योंकि ये तो फिर आपके अपने तदब्बुर पे होता है। अब देखे ना जी, जैसे आजकल सुना आपने और पढ़ा आपने अखबारों में भी, हिंदुस्तान का, पाकिस्तान का एटमी धमाके करना, ये करना, ये सारी चीजें आपने पढ़ी है। तो इस पर एक जो साइंसदान है वो अपनी नजर डालेगा, जो सियासी लोग हैं वो अपनी नजर से सोचेंगे, जो इक्तसादी लोग हैं वो अपनी नजर से सोचेंगे कि इसमें कितना फायदा कितना नुकसान, वो जरूर तकसीम

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: अब आप इस मुबारक सिलसिले का तीसरा हलका समाअत फरमाएं।
2: फौरन क्योंकि हजूर ने आके कहना था ला किसरा वला कैसरा बादल, तो ये सारे इंतजामात जो किए जा रहे हैं कि कहीं किंगरे गिर रहे हैं और रोशनी आती है तो रोशनी से सीधा सूर्य शाम शाम के महल दिखाए जाते हैं, क्योंकि मेरे मदनी की इब्तदा मक्का से थी, महजर मदीना था और इंतहा शाम थी। क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कहां से हुआ, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसरा कहां से हुआ, मक्का से शाम बैतुल मक़दस, और यौम महशर कहां कायम होगा, शाम बैतुल मक़दस। तो लिहाजा इब्तदा थी और यहां से नूर के साथ आपका इंतहा भी दिखा दी गई कि मदनी का मौलद मक्का होगा और महजर जो है वो तैबा होगा और मुंतहा जो है वो शाम होगा, बैतुल मक़दस होगा। अच्छा, और खुदा की शान देखें, ईसा इब्ने मरियम भी तस्दीक के लिए कहां उतरेंगे, वही शाम। तो अब जनाब बीबी आमिना फरमाती हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकारे दो आलम रहमते दो जहां, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो फरमाती हैं ये तमाम दुनिया के बच्चों से एक अलहदी वजह पे पैदा हुए कि बाकायदा मुअर्रखीन ने लिखा है कि आप जब पैदा हुए तो आपके दोनों हाथ जमीन पे थे और ऐसे महसूस होता था कि सजदा कर रहे हैं अपने अल्लाह को, और उसके बाद ऐसे उंगली उठाई और आसमानों की तरफ देखा। ये कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि एक पैदा होने वाला बच्चा यूं करे। बाज़ उलमा ने तो हजूर का कलाम भी नकल किया है कि जैसे महद में ईसा अलैहिस्सलाम ने कलाम किया, इसी तरीके से यानी गोद में उस माश्ता के बेटे ने कलाम किया, असाब उखदूद के वाकये में बाकायदा एक बच्चे ने कलाम किया, मूसा अलैहिस्सलाम पे जब तोहमत लगी तो बच्चे ने कलाम किया, यूसुफ अलैहिस्सलाम पे जब तोहमत लगी तो बच्चे ने कलाम किया। तो बाज़ उलमा ने नकल किया है कि हजूर ने भी कलाम किया, और बाज़ ने इतना लिखा है कि पहला कलाम ही ये था अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुबहानल्लाह बुकरतन व असीरा। और सीरत पाक के इस पहलू पे देखेंगे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाती हैं कि वुलिदा मख्तूनन व मसरूरा, कि हजूर जब पैदा हुए तो खतना हो चुका था और हुजूर जब पैदा हुए तो चेहरे पे मुस्कुराहट है, मसरूर है, खुशी है। अब्दुल मुत्तलिब को खबर दी गई क्योंकि हुजूर की पैदाइश से 6 महीने पहले ही आपके वालिद अब्दुल्ला तो फौत हो गए। अब खुदा की शान देखें कि वालिद यूं फौत हो गए, फिर बाद में वालदा फौत हो गई, दादा फौत हो गए, चाचा फौत हो गए, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो शान यतीमी जिसको कुरान ने खुद जिक्र किया कि अलम यजिद का यतीमन, लेकिन आगे भी कह दिया फा आवा, कि मेरा मदनी आपको हमने यतीम नहीं पाया, फिर हमने आपको खुद तरबियत दी, खुद हिफाजत की। क्योंकि कोई ये तसव्वुर ना करे कि यतीम बच्चे तो आमतौर पर भटक जाते हैं, उनको तो कोई संभालने वाला नहीं होता, ना बाप ना माँ। जिनके माँ बाप हैं वो तो कंट्रोल करते हैं ना बच्चे को, क्या पढ़ रहा है, कहाँ जाता है, कहाँ सोता है, कौन दोस्त है, लेकिन जो यतीम है उसका कौन फिक्र करे। अल्लाह ने फरमाया ना ना मेरे मदनी को ऐसा यतीम ना समझना, उसका तो मैं खुद इंतजाम करने वाला हूँ और मैं वालिदैन को भी उठा रहा हूँ ताकि अगर कल को कोई बच्चा काबिल हो तो लोग कहते हैं ना जी अजी ऐसे बहरहाल क्यों ऐसे काबिल ना होता, देखो किस बाप का बेटा है, तो लोग उसकी काबिलियत को बाप की तरफ निस्बत करते हैं, शागिर्द की